FM 102.7 MHz आकाशवाणी जलंधर 103.6 MHz आकाशवाणी अमृतसर दे श्रोते सुन रहे ने FM रेनबो चैनल सवेर दे 7 बजे ने पेश ने हुन तक निया FM न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते म्यांमा दे राष्ट्रपति ने नवी दिल्ली दे विच मुलाकात की थी। दोवां नेतावां ने दुवल्ले संबंधां नूं मजबूत करन बारे चर्चा की थी।

FM 102.7 MHz, FM रेनबो तुसी सुन रहे हो नाल दी नाल स्रोते जुड़े हुए ने 103.6 MHz आकाशवाणी अमृतसर दे 8:40 थोड़ी अपनी आज अंजलि लेके हाजिर हो चुकी है जी। अड्डी टप्पा प्रोग्राम एंजॉय करो, ये प्रोग्राम 9 बजे तक बहुत सारे पंजाबी गीत मैं थिरकन दे लिए थोनू मजबूर तक कर ही देंगे। आज इंजॉय करते हैं, इस सफर से निकलते हैं और थोड़ा जहा पैरों थिरका ही लेने हैं।

0: लड़के।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: ਬੈਂਡ ਵਾਲਿਓ ਚੱਕ ਲਓ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਵਾਜੇ ਨਾਲੇ ਕਸ ਲਓ ਪੀਪਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत विच जिस सौर क्रांति का आगाज किया सी उसका असर हुण दिखाई देन लगा है। भारत विच एक एक करके 30 लाख तो वध परिवारां दी छत ते सोलर पैनल लग चुके हैं। तुसी वी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़न लई रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।

दिल वाले फिल्म का गीत तुसी हुणी इंजॉय किया, बहुत ही मजा आया। मैंने तो सुन के तुहानू भी बहुत अच्छा लग रहा होएगा। कुमार सानू ते अलका याग्निक की आवाज़ के यह गीत सुनिया। 10:45 हो रहे हैं, असं अलग अलग कंट्रीज़ में घूमन फिरन जाने है। करंट इन्फॉर्मेशन जी, करंट अफेयरस की इन्फॉर्मेशन हमेशा रखते, जनरल नॉलेज जी है ना बहुत जरूरी हैगी है। सो एक जनरल नॉलेज का सवाल थोड़े तो पूछती हाँ भी, मोस्टली देखा जाता हैगा कि जिन्या भी कंट्रीज़ है उन्होंने जोड़े फ्लैग्स होंगे झंडे होंगे वो रैक्टेंगल शेप होंगे, पर एक कंट्री इस तरह की है कि जेदा झंडा रैक्टेंगल शेप नहीं है। दिमाग दिया गरारियां घूमनिया शुरू। सो हूँ तुम ये सोचो कि बई यह कौन कंट्री, मैं पता है कि इंटरनेट पर लभना शुरू कर देना है, तो वो ये भी दस दिनी हूँ थानू कि दो कंट्रीज इस तरह दी है कि जिन्हों का झंडे की जी शेप है वह स्क्वायर हैगी है, चारे पासे बराबर स्क्वायर। दो कंट्रीज इस तरह दी है जिन्हों की झंडा जड़ा है वह स्क्वायर शेप है, और एक कंट्री इस तरह की है जिहदा झंडा ना स्क्वायर है तो ना ही रैक्टेंगल है, बिल्कुल अलग है। सोचन च पै गए तुसी, सोचो सोचो ते नाल इंजॉय करो इस गीत नू, ते उस तो बाद मैं तुहानू दसूंगी ये केड़ी कंट्रीज दी मैं गल कर रही हूँ।

हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल। प्रोग्राम होम स्वीट होम लेके मैं इंद्रप्रीत सिरा हाजिर आज तुहाडे अपने फेवरेट चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते। तो तुसी की करना जी? बिल्कुल सही तुसी सोचा है, तुसी पेन पेपर या डायरी या पेन लेके

दोस्तों प्रोग्राम इंजॉय कर रहे हो होम स्वीट होम ते मैं गल कर रही थी कि घर में हाइजीन का ध्यान रखना किदा जरूरी है। सो जिहड़े टावल्स असी यूज़ करते तौलीए, वैसे तो हर एक मैंबर का अलग टावल यूज़ तुसी करते ही हो, अच्छी गल है। पर कई बार की होंगे कि जिहड़े भैन भरा होंगे ना, जल्दी जल्दी एक दूजे का टावल भी यूज़ कर लेंगे ने, वह गलत गल हैगी। अपना टावल सिर्फ अपने लिए ही रखना हैगा, और बेडशीट्स जिनी जल्दी हो सके उन्होंने चेंज करना चाहिए, क्योंकि जेडे मोस्टली बच्चों का घर होंगे ना, उत्थे बच्चे नंगे पैर सीधा आके बैड के उत्ते छलांग लगाते हैं तो सारी बेडशीट गंदी हो जाती। सो उन्हें जल्दी तो जल्दी बदलना बहुत जरूरी है। हो सके तो जेडे पिल्लो कवर्स होंगे उन्होंने गर्म पानी धोता जाए तो ज़्यादा बैटर है, क्योंकि उन्हें बैक्टीरिया जल्दी खत्म हो जाता है। तो घर के वेंटिलेशन करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हुण असीं गर्मी के ए सी चलाने हैगे तो सारे दरवाजे खिड़कियां जिहड़ियां घर दियां बंद होंदियां। सो घर के हमेशा एक या दो वारी घर के दरवाजे खिड़कियां जरूर ओपन करनिया चाहीदियां है कि जिहड़ी हवा क्रॉस हो जाए, एंड इहदे नाल की होएगा कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाएगी कमरे की। जिहड़ा अंदर हवा होंदी है ना, उहदे विच वी वायरस हुंदा है, बैक्टीरिया हुंदा हैगा, सो वह भी दूर करना जरूरी है। इस करके जदों भी तुहानू टाइम लगे वेंटिलेशन अपने घर दे खिड़कियां दरवाजे थोड़े टाइम लई खोलने जरूर चाहिए ने, जो बंद रहणगे तो घर दे अंदरों बहुत ही ज़्यादा अजीब जी स्मैल आनी शुरू हो जाएगी। सो बैटर हैगा कि इन्हां चीज़ों का तुसी ध्यान जरूर रखना हैगा, एंड खास करके जदों भी तुसी बाहरों आंदे हो तो अपने जिहड़े शूज़ है वह सही जगह पर उतार के रखने चाहिए हैगे, तो उतों ही चप्पल पा के अपने घर के अंदर जाना चाहिए। ये नाल की हैगा कि बहुत घट जर्म्स तुहाडे घर के अंदर जाते हैगे। सो ये भी कोशिश करो कि अपने जिहड़े बाहरों तुसी शूज़ पा के आ रहे हो, बाहर अपने रैक ते शू रैक ते उतार के उतों अपनी घर वाली चप्पल पा के घर के अंदर जाओ। सो इंजॉय करते एक होर गीत मास्टर सलीम की आवाज़ 'ਚ।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, प्रोग्राम होम स्वीट होम चल रहा है तुम्हारे अपने चैनल 102.7 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो ते ते मैं तुम्हारी दोस्त इंद्रप्रीत सरा। वैल असी रेगुलर अपनी रूटीन दे विच लैपटॉप तो यूज़ करते हैं, मोबाइल तो यूज़ करते हैं, लैपटॉप भी असी यूज़ करते हैं। सो कई चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा है जो तुसी एक लैपटॉप नू यूज़ करते हो। कई बार की है कि फोन चार्ज करना होंदा है तो सोचते हैं लैपटॉप दे नाल ही चार्ज कर लैंदे हैं। कदी कदी कर लिया इट्स फाइन, बट जे तुसी ये रेगुलर रूटीन बना लेंदे हो कि काम करते टाइम अपने लैपटॉप दे नाल ही अपना फोन चार्जिंग ते लगा लेंदे हो, उहदे नाल हुंदा की हैगा जिहड़ा तुहाडा लैपटॉप हैगा उहदी बैटरी बहुत ही जल्दी खराब हुंदी हैगी है, क्योंकि बार बार सेम चीज़ रिपीट कर जा रहे हो। तो इहदे नाल हुंदा की है कि जिहड़ी एक टाइम हुंदा हैगा कि लैपटॉप की बैटरी इन्ना टाइम चलेगी, उस तो वह घट चलती हैगी है एंड जल्दी खराब इसकी बैटरी हो जाती है। एंड तुसी नोट भी की होनी एक गल कि जिहड़ी चार्जिंग हैगी बहुत ही स्लो हुंदी हैगी है, तो इहदे नाल की है कि लैपटॉप ओवरहीट हो जाता हैगा। ये जिहड़ी चीज़ निक्की जी चीज़ हैगी है, इहनूं समझण दी लोड़ हैगी है। जे तो असी चाहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लैपटॉप्स आते, इन्ने महंगे असी लेंदे भी हैं, तो उन्हों असी फिर चार्जिंग करने लिए फोन पर क्यों रख लें। इस थोड़ा जिहा कंट्रोल करो, बिकॉज जो ओवर हीटिंग होंगी उहदे नाल जिहड़े है तो अपलायंसिज एक तरह की इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिज ही है, किसी भी टाइम ओवरहीट हो के खराब हो सकदियां हैगियां। सो इन्हां दा ध्यान रखना बहुत जरूरी हैगा। एंड जो भी तुसी लैपटॉप यूज़ करते हो तो उन्हों टेबल पर रख के यूज़ करना चाहिए, कभी भी अपनी गोद में रख के उसनों यूज़ नहीं करना चाहिए। उहदे नाल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तुहाडी ह्यूमन बॉडी के आती हैगी है, तो इनू भी चीज़ नू थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हैगा। सो कुछ सावधानियां जिहड़ियां मैं तुहानू दस्सियां वो ये हैगियां कि बई फोन जिहड़ा हैगा अपना चार्ज नॉर्मल तरीके दे नाल करना चाहिए हैगा, जिहड़ा प्रॉपर चार्जर उहदे नाल मिलना चाहिए हैगा। सो लैपटॉप दे नाल अ बिग नो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक होर खास गल मैं तुहानू दस दिंदी हाँ, जो भी तुसी कुछ पब्लिक एरिया ते हुंदे हो और तुसी अपना फोन चार्ज करना होवे तो एक गल दा ध्यान जरूर रखियो कि तुसी नॉर्मल बिल्कुल चार्जिंग करन वाली केबल यूज़ करनी है, डेटा केबल जिते सिर्फ चार्ज कर सको, ना कि उतो डेटा ट्रांसफर हो सके। सो जिते भी पब्लिक प्लेस विच तुसी चार्ज कर रहे हो अपने फोन नू, सिर्फ तो सिर्फ चार्जिंग वाली डेटा केबल यूज़ करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम पता कितने आती है, जो असी किसी होर दे लैपटॉप तो या फिर कंप्यूटर तो अपना फोन चार्ज करते हैं, हो डेटा केबल इदा दी हुंदी है जे तो डेटा ट्रांसफर हुंदा हैगा, उन्हूं कहिंदे जूस जैकिंग। सो उस चीज़ तो बचण दे लई उहदे नाल जूस जैकिंग ना हुंदा की है, तुसीं तां डेटा ट्रांसफर वाली डेटा केबल लगा ली सपोज चार्जिंग करन दे लई, उन्हां होणा की है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ

वक्त नहीं, मैं टाइम नहीं दसन लगी हैगी, मैं फिल्म का नाम दस रही हूँ, वक्त। वक्त फिल्म का गीत तुसीं सुनिया आशा भोसले की आवाज़ दे विच। टाइम हो रहा जी 1:12, प्रोग्राम चल रहा है मिडडे मेलोडीज तुहाडे अपने फेवरेट चैनल 102.7 MHz FM रेनबो ते नाल ही नाल 103.6 MHz आकाशवाणी अमृतसर ते। तेरी सादगी में भी एक अलग सा नूर है, तेरी सादगी में भी एक अलग सा नूर है, चेहरे पर छाया ये मासूम सा सुरूर है, तुझे देखकर हर कोई बस यही कहता है, तुझे देखकर हर कोई बस यही कहता है, खुदा ने फुर्सत में तराशा तुझे ज़रूर है।

चेहरे में जाने क्या जादू था उस अजनबी चेहरे में, खुद को बहुत रोका फिर भी उसके होते गए।

मेरी ज़िंदगी की रोशनी तुम हो, मेरे ख्वाबों की परी तुम हो, जिस आईने में सजती हो तुम, जिस आईने में सजती हो तुम, उस आईने की भी वजह तुम हो।

0: दिल तुझे किसने कहा था प्यार कर,
1: दिल
0: आज हाँ दिल तुझे किसने
1: किसने
0: कहा
1: कहा
0: था
1: था प्यार
0: प्यार
1: कर।
0: कर, आज के मुश्किल भरे हालात में
1: क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत।
0: अब मेरा अच्छा बुरा इस बात में, दिल लिफाफे में लिफाफा हाथ
1: हाथ
0: में।
1: में, बहुत खूब जी। बस ये नाल ही जी दो लाइनां मैं भी जोड़नियां चाहुंना जी, ताज़ा ताज़ा लिखिया ने। उम्मीद करदा जी तुहानूं पसंद आई होणगियां कि हालात को हवालात बनाते बना देते हैं राज, हालात को हवालात बना देते हैं राज। ये जिहड़ा हवालात है जी, इत्थे प्यार प्यार वाला हवालात है, मतलब वो कैद जितों असीं निकलना नहीं चाहवांगे कि हालात को हवालात बना देते हैं राज, नहीं निकल सकोगे इस हालात में।
0: वाह जी वाह,
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, ते बहुत खूबसूरत शायरी सी राकेश राज जी तुहाडी, ते उम्मीद करते हैं जी कि फिर तो जल्द मौका मिलेगा, जल्द तो तुहाडी होर खूबसूरत गज़लां दे विचों कुछ गज़लां असीं जरूर सुनांगे। पर खैर, तुसीं अज दे इस दिन दे उत्ते प्रोग्राम दे लाज

0: वेरी गुड आफ्टरनून रेडियो डॉक्टर में मैं सुजाता रथ आपकी एंकर और हमारे एक्सपर्ट से आइए मिलते हैं उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थैल्मिक साइंसेस एम्स डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है
1: नमस्कार तमाम श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार
0: तो डॉक्टर साहब आज का टॉपिक हम अपने सुनने वालों को बताते हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स गर्मी के दिनों में अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें तो डॉक्टर साहब आई एक्सपर्ट हैं आंखों के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल तो डॉक्टर साहब जाहिर सी बात है कि आंखों की सुरक्षा तो हमेशा की जानी चाहिए किसी मौसम से जुड़ी हुई बात तो ये है नहीं क्योंकि आंख जो है वो ईश्वर की सबसे मैं कहूँ कि कीमती नेमत है उपहार है जो हमें मिला है इस खूबसूरत जहाँ को देखने के लिए तो डॉक्टर साहब लेकिन ख़ास करके जो आज टॉपिक हमने चुना है कि गर्मियों के मौसम में हम आंखों की सुरक्षा करें तो इसको आप किस तरह से समझाना चाहेंगे गर्मियों में क्यों ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है डॉक्टर साहब आँखों की
1: जैसा हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे देश में सीजन्स चेंज होते हैं उसी तरह से एक शारीरिक जो है समस्या भी साथ में चलती चली जाती है जैसे गर्मी आती है तो आप जानते हैं वातावरण का टेम्परेचर बदल जाता है हवाएं गर्म हो जाती है और कभी कभी साथ में गर्म लू चलती है जिसके कारण से शरीर में बीमारी तो होती ही है आँखों में भी बीमारी हो सकती है इसमें हम जानते हैं कि छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बूढ़ों को भी जो है तकलीफ़ हो सकती है जो लोग घर के अंदर रहते हैं उनको भी तकलीफ़ हो सकती है और जो बाहर काम करते हैं जिन्हें भीड़ वाले एरिया में जाना पड़ सकता है या जो खेतों में काम करते हैं उन सभी को कष्ट हो सकती है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सोचने वाली बात है जो गर्म हवा होती है उसका इम्पैक्ट जो फेस में या चेहरे में क्या होता है और आँखों में उसका असर क्या होता है ये हमें जानने की आवश्यकता है हम जानते हैं जब गर्म हवा आँखों में हीट करती है तो आँखों में एक पतली सी लेयर होती है जो हमें जिसे हम टियर फिल्म कहते हैं वो करीब करीब 12 से 15 सेकंड तक रहती है आँखों में तब आपको पलक झपक के टियर फिल्म दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़ती है गर्मी में क्या होता है कि टियर फिल्म बहुत जल्दी सूख जाता है जिससे आपको ड्राइनेस हो सकती है आँख में सूखापन आ सकता है और जिन लोगों को पहले से ही सूखापन की बीमारी होती है उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होना शुरू हो जाता है इस मौसम में और कभी कभी हम जानते हैं कि दिल्ली और जितने भी हमारे जो बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी होती है वहाँ पर एक बीमारी आ जाती है जिसे हम आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं ये बरसात में ज़्यादा होती है लेकिन अभी से इसकी शुरुआत होनी शुरू हो गई है और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है जैसे आप जानते हैं गर्मी में पसीना आता है आप काम कर रहे हैं आपको पता नहीं चलता है डिहाइड्रेशन हो जाता है उसका असर भी आँख में पड़ता है तो आपकी जो रोशनी होती है जो नज़र होती है दूर की या पास की उसमें भी फर्क पड़ सकता है हो सकता है चश्मे का नंबर आपको चेंज करना पड़ जाए कुछ बीमारियाँ होती है जिसका कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाता है गर्मियों में जैसे आप डायबिटीज़ के मरीज हो या हाइपरटेंशन हो आपको वो बीमारियाँ इस मौसम में जो है थोड़ी सी जो है अनकंट्रोल हो जाती है उसका असर भी आँखों में पड़ सकता है
0: जी तो सर बहुत सारी आपने बातें बताई कि गर्मियों में खास करके आँखों की सुरक्षा की क्यों ज़्यादा आवश्यकता है चलिए डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें जानेंगे और बहुत सारी सुरक्षा के उपाय भी जानेंगे लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और डॉक्टर साहब आपकी फरमाइश पर जुबिन नौटियाल का गाया हुआ एक आंखों से रिलेटेड गाना है मुझे मिल गया तो चलिए सुन लेते हैं

0: दिन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
1: नमस्कार अभिनंदन।

0: यह इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स, गर्मियों में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, और इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थाल्मिक साइंसेस एम्स। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें हमको शुरू में बताएं कि गर्मियों में क्या तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आंखों की, तो क्यों गर्मियों में ज्यादातर सुरक्षा की जरूरत पड़ती है आंखों की, और कैसे देखभाल करें ये भी हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। लेकिन फिलहाल कॉलर्स हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, डॉक्टर साहब आइए इनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो हेलो,
0: हाँ जी पूछिए।
1: जी मैं गौतम कुमार बोल रहा हूँ, और ये गर्मी में हम लोग सिलाई करते हैं तो कैसे बचा जाए, क्या उपाय करना चाहिए?
0: हाँ जी,
2: नहीं नहीं गौतम, जब आप सिलाई करते हैं तो हम जानते हैं कि सिलाई एक हो सकता है बंद कमरों में नॉर्मली होती है, वहाँ पर गर्मी रहती है और पसीना आता है
1: जी।
2: जब पसीना ज़्यादा आता है तो उससे भी जो है आँखों में दिक्कत आ सकती है और चेहरे में भी जो है दाने हो सकते हैं पसीने के कारण। तो उसमें या तो हवादार कमरा हो या खिड़की हो जिससे कि हवा जो है बाहर निकल जाए, साफ हवा अंदर रहे। यदि आंखों में आपको जलन हो रही है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम रहता है ऐसे लोगों के लिए, तो ऐसे में जो है एक सिंपल आर्टिफिशियल टीयर हम बोलते हैं उसको लगा सकते हैं, जैसे टीयर ड्रॉप्स बोलते हैं, उसको दो या तीन बार डालेंगे आंखों में तो आँख साफ हो जाता है। और साथ में करीब करीब दिन में दो या तीन बार हाथों को धो लीजिए और आँखों को भी चेहरे के साथ धोएंगे तो ये दिक्कत कम हो जाएगी पसीने की जो है।
1: और
2: पास के काम करने में दिक्कत आ सकती है, यदि साफ नहीं दिखता तो पास का चश्मा लगा के काम करना चाहिए।
1: ठीक है गौतम सर, नमस्कार सर।
2: ठीक है गौतम जी।
0: सर एक और कॉलर है। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
3: मैं विजय बहल बोल रहा हूँ गाजियाबाद से।
0: हाँ जी
2: नमस्कार, बोलिए पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका।
3: मेरा क्वेश्चन, मेरा पहले मैंने बात किया था डॉक्टर थे, मेरे को मैकुलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम है।
2: अच्छा,
3: सिंस लास्ट 25 ईयर्स।
2: ओके,
3: मैं इस बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ।
2: देखो विजय जी, मैकुलर डिजेनरेशन एक ऐसी बीमारी है जो एक

0: बार हो जाए तो उसको रिवर्स या वापस नॉर्मल नहीं कर सकते हैं।
1: मुझे रिवर्स नहीं
0: हाँ, तो
1: करवाना
0: उसमें
1: है।
0: उसमें जो है इलाज संभव है, उसके कुछ जांच हमें करने पड़ेंगे। रेटना का जो है स्कैनिंग हो सकता है या फिर एंजियोग्राफी कर सकते हैं, यदि उसमें कोई खून की नसें ग्रो कर रही है या फिर कोई ब्लड आ रही है। तो आंखों में दो तरह के इलाज हो सकते हैं। जब सूजन होती है तो हम आंखों में इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि सूजन कम हो जाती है और नज़र बढ़ जाती है बहुत सारे लोगों की। यदि जो है सूजन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं हो रही तो उसके साथ में लेजर भी कर सकते हैं जिससे कि जो है सूजन एकदम से कम हो जाए। तो ये जानना जरूरी है कि बीमारी किस स्टेज में है। तो मैं चाहूँगा कि एक प्रॉपर आप चेकअप करा लें, गाजियाबाद एम्स के बहुत ही पास में, कभी आकर के चेकअप करा लीजिए जिससे कि हम प्लानिंग कर सकें किस तरह का ट्रीटमेंट आपके लिए पॉसिबल है।
1: ठीक है ठीक है,
0: थैंक
1: थैंक
0: यू,
1: यू सो मच, थैंक यू सो मच
0: मोस्ट वेलकम।
2: जी, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ।
3: हाँ जी बोलिए।
2: मैडम मेरे जो है आंखों से जो है अब बहुत ही कम चमकने लगा है और आंख में थोड़ा सा ज्यादा सा भी दिखाई देता है।
0: आपकी उम्र कितनी है?
2: 54-55 वर्ष है सर।
0: अच्छा,
2: पहले से ही बचपन से ही मुझे कम दिखता था और अब जो है अब तो बिल्कुल ना के बराबर है मामला बस।
0: ओके, अब चश्मा लगाते थे?
2: कुछ नहीं लगाते थे।
0: अच्छा, देखो हुसैन जी, 55 साल की उम्र आते आते
2: जी
0: कुछ बीमारियां जो है धीरे धीरे जो है खराब होती चली जाती हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपको कम देखने की बीमारी बचपन से ही थी, तो उसमें मुख्यतया जो है एक तो कारण होता है कि आंखों में चश्मे का नंबर रहा हो और उसको आपने उस समय चेक नहीं कराया, या पीछे का या आगे का पुतली या पर्दा खराब हो सकता है जो धीरे धीरे ज्यादा खराब होते चला जाता है, उसमें जो है रोशनी कम हो सकती है। अभी पचपन साल की उम्र में आपकी रोशनी ज्यादा कम हो रही, तो साथ में या तो सफेद मोतिया आ रहा होगा या काला मोतिया भी हो सकता है, या फिर आप डायबिटिक होंगे तो पीछे पर्दे में डायबिटीज का असर भी आ सकता है। तो उसकी जांच करने की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं।
2: सर जांच कराई थी मैंने तो कॉर्निया भी और डिश वगैरह भी सब सही थी।
0: बहुत बढ़िया। हाँ
2: जी,
0: तो इसका मतलब ये है कि जो रेटिना है हो सकता है उसमें दिक्कत आ रही हो, तो एक प्रॉपर चेकअप करा लीजिए अच्छे हॉस्पिटल में। मुरादाबाद में भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन है आंखों के।
3: सर हमने बहुत सारे कॉलर्स को तो ले लिया, लेकिन हमारे व्हाट्सएप वाले जो लिसनर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए एक दो मैसेजेस ले लेते हैं। सर एसएसपी गुप्ता रांची से इन्होंने लिखा है कि मेरी वाइफ का कैटरेक्ट ऑपरेशन हुआ है 6 महीने पहले, तो उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए?
0: हाँ गुप्ता जी, आपका ये सवाल बहुत ही सुंदर और वाजिब है इस आज के प्रोग्राम के समय में। जहाँ तक कैटरेक्ट ऑपरेशन हो चुका है, 6 महीने हो चुके हैं, तो हम नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में आदमी को नॉर्मल मानते हैं कि उसके कारण से कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, यदि आपके वाइफ को कोई और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, यदि डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या फिर सूखेपन की प्रॉब्लम हो जो कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कभी कभी बढ़ जाती है, और गर्मियों में बहुत से लोग जो है एयर कंडीशन में बैठते हैं तब भी आपको जो है आंखों में सूखापन हो सकता है, बाहर निकलेंगे तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि एक काला चश्मा या गॉगल्स या लगा लें जिससे कि आँख में रोशनी कम जाएगी और उनको दुविधा कम रहेगी। इसके अलावा ज्यादा कोई प्रिकॉशन नहीं है, नॉर्मल की तरह एक्टिव रहिए और सारा काम करिए।
3: जी सर। सर आपने ड्राई आईज की बात कही तो एक मैसेज आया है मिसेस सुचित्रा रॉय का शांति निकेतन वेस्ट बंगाल से। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र जो है 67 साल की है ये, और शी इज हैविंग ड्राई आई प्रॉब्लम और आई बॉल्स बिकम्स रेड, प्लीज एडवाइस।
0: ये जो आप कह रहे हैं कि ड्राई आई आपको है और आंखें लाल हो जाती है, तो इसका एक ही संकेत है या एक ही इसका कारण हो सकता है कि आपकी ड्राई आई काफ़ी क्रॉनिक है। इसका मतलब बहुत समय से आपको ड्राई आई की बीमारी हो रही है, इस कारण से आंखें लाल हो जाती है। तो जो भी दवाइयां आप डालते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ सकती है। कभी कभी आंखों में ड्राई आई के साथ साथ में इन्फ्लेमेशन या सूजन आ जाती है जिसमें लाली ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में जाँच करने के बाद थोड़े से लाइट स्टीरॉयड ड्रॉप डालेंगे तो लाली एकदम से कम हो जाएगी। ये डॉक्टर को दिखा करके उसके बाद ही इस दवाई को यूज़ करना चाहिए। दूसरा जो है, इस एज में और बीमारी भी हो सकती है जिसके कारण ड्राइनेस बढ़ सकती है, जैसे आपको थायराइड की बीमारी हो या आपके जोड़ों में दर्द हो जैसे आर्थराइटिस हो, तो ऐसे लोगों को ड्राई आई ज़्यादा रहती है, तो उसकी भी जाँच करा लें। यदि वो है, यदि उस

0: को कंट्रोल करेंगे तो ड्राई आई की समस्या भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। हम जानते हैं कि ड्राई आई किसी को हो जाए तो बिल्कुल रिवर्सल या नॉर्मल लेवल में नहीं आ सकता है, लेकिन जो भी सिम्टम्स है, जो परेशानी है, उसको दवाइयाँ डाल करके या और इलाज करके उसको सुविधाजनक कर सकते हैं हम लोग।
1: तो डॉक्टर साहब, आपसे बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है कि हम आपकी पसंद का एक बहुत ही एवरग्रीन गाना जो है अपने श्रोताओं को सुनवाए। कहिए, सुनवा दो सर।
0: जरूर जरूर।
2: नहीं नहीं

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
2: How to protect your eyes in summers? गर्मियों के दिनों में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, हमारा आज का विषय है। रेडियो डॉक्टर में आपकी एंकर हूं मैं सुजाता रथ और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल, डॉक्टर आरपी सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर साहब, बात चल रही है कि गर्मियों के मौसम में आंखों की सुरक्षा कैसे की जाए, तो चलिए इसी बात पर आते हैं कि गर्मियों के दिनों में हम जब बाहर निकलें, घर से बाहर निकलें, तो क्या क्या हमको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, आंखों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
3: इसमें 2-3 चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है। एक तो ये ध्यान देना जरूरी है कि आंखों में रोशनी ज़्यादा ना पड़े या फिर गर्मी की हवा ना पड़े, तो इसके लिए गॉगल्स जो है लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कॉमन भाषा में धूप का चश्मा कहते हैं, वो लगाना ज़रूरी है। और साथ साथ में आप जो है हैट या कैप ऊपर से लगाएंगे तो उसके साथ में भी जो है

0: आंखों में रोशनी कम पड़ती है और प्रोटेक्शन हो जाती है। ये ज़रूरी है कि यदि आप कहीं भीड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर ये प्रिकॉशन जरूर रखना है कि लोगों को को भी ध्यान रखना कि चोट न लग जाए आंखों में, क्योंकि गर्मी में लोगों को जो है डेफिनेटली जो है चोट लगने के चांसेस ज़्यादा रहती हैं, कि ट्रैवलिंग भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यदि लंबे समय के लिए आप बाहर निकलें तो साथ में पानी का बॉटल साथ लेके जाइए, क्योंकि कभी कभी आंखों में कुछ गिर गया या आपको आंखों में जलन हो रही है तो साफ पानी से आंख धोएंगे तो उससे भी आराम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एंटीबायोटिक या आंखों की ड्रॉप्स इमिडिएटली मिल नहीं सकती है। तो पानी जो है बहुत अच्छा एक इलाज हो सकता है ऐसे समय में। दूसरा जो है, यदि आप कोई आंखों में दवाई डालते हैं जैसे काला मोतिया का दवाई हो तो साथ में लेके चलें, जिससे कि आपकी दवाई की टाइमिंग ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है सही टाइम में डालना उसको अति आवश्यक होता है। यदि आपको चश्मा ऐसे ही लगाया जैसे दूर का चश्मा लगाया तो उसको ज़रूर लगाएं, उसके ऊपर से आप जो है धूप के चश्मे का या तो फ्लैप लगा सकते हैं, आजकल मिलते हैं बहुत सारे फ्रेम जिसके ऊपर से जो है धूप के चश्मे का फ्लैप लगा सकते हैं, या फिर जो आपका धूप का चश्मा उसमें भी नंबर का चश्मे का शीशा लग सकता है जिसमें आपको देखने की सुविधा हो सकती है।
1: जी सर, सर व्हाट्सएप मैसेज है, मध्य प्रदेश से आया है ये, मृत्युंजय कुमार, ये शिक्षक हैं गया बिहार से है ये मैसेज सर, कि लिखते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर काम करते समय डस्ट का सामना करना पड़ता है, क्या ये आंखों को नुकसान कर सकती हैं, अगर करती हैं तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए और धूप से बचने के लिए आंखों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ये बात तो अभी आपने बताई धूप वाली बात, लेकिन इनकी जो दूसरी बात है बहुत इम्पोर्टेंट है,
0: बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल भी हमारे जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ब्लैक बोर्ड और चौक का इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े सारे शहरों में अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो चौक यूज़ करते हैं उससे आंखों में एलर्जी या जलन हो सकती है, उसके जो कण है वो फैल जाते हैं, ब्लैक बोर्ड जब साफ़ करते हैं आप या जब लिखते हैं तो आंखों में जा सकते हैं, और लंबे समय तक लगातार यदि गिरते रहें तो आंखों में एलर्जी हो सकती है, उसमें बार बार आंखों में खुजली होना या दर्द होना या फिर पानी आना और लालीपन होना जो है हो सकता है। तो ऐसे में जैसे मैंने शुरू में कहा था, एक तो आंखों का आप धो सकते हैं साफ पानी से, या फिर आर्टिफिशियल टीयर लगातार डाल सकते हैं। यदि आप जो है को लगता है कि आंखों में चौक चला गया या पाउडर चला गया तो इमीडिएटली कोई भी जो साफ पानी हो, रनिंग वाटर हो, उससे आंख धो लेंगे तो आपकी समस्या दूर हो सकती है। दूसरा ये है कि तो एक चश्मा लगा के आप काम करेंगे तो डायरेक्टली आंखों में नहीं गिरेगा, और कभी कभी जैसे शुरू में कहा था गर्मी के बचाव के साथ साथ में स्कूल में भी जो है आप एक हैट लगाएंगे तो उससे भी जो है चीजें डायरेक्टली आंखों में नहीं गिरेंगी।
1: कॉलर है सर, हेलो
2: हेलो,
1: हाँ हेलो
2: अनूप सो रांची,
1: हाँ
2: हेलो,
1: हाँ सुनाई दे रही है, अनूप जी बोलिए।
2: सर धूप में ना चकाचौंध सा होता है और आई में ड्राइनेस है, आई एम 52 ईयर्स ओल्ड, डायबिटिक एंड बीपी 2।
0: हाँ हाँ हाँ, ये सारे बात हम डिस्कस कर चुके हैं अनूप जी, लेकिन आंखों में चकाचौंध होना जो है ड्राइनेस के कारण भी होता है, कभी कभी आपका चश्मे का नंबर सही न हो उससे भी होता है, आपको डायबिटीज है तो डायबिटीज में भी कभी कभी जो पर्दे में सूजन आ सकती है तो उससे भी चकाचौंध हो सकता है, या फिर करीब करीब शुरुआत हो रही हो मोतियाबिंद की उसमें भी बहुत सारे लोगों को जो है रोशनी में दिक्कत आती है। तो यदि आपको ये दिक्कत आ रही है तो एक चेकअप जरूर कराइए आप, जिससे कि एक्चुअली क्या कारण है पता चल जाए।
2: जी सर,
0: और दवाइयाँ जरूर डालिए ड्राइनेस की आप।
2: जी सर,
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू।
1: सर आपने बताया कि धूप में निकलते वक्त हमें सनग्लासेस गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए और पानी के छींटे मारने की बात की, तो सर ये सनग्लासेस जो है इसकी क्वालिटी को लेकर बहुत बातें कही जाती है कि अच्छी क्वालिटी की ही होनी चाहिए, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करने वाली, पता नहीं ये मार्केटिंग की बातें हैं या क्या, ऐसे इस बारे में थोड़ा सा क्लियर हमको बताइए।
0: दो चीज़ें हैं, दो तरह के सनग्लासेस हो सकते हैं, एक सनग्लासेस होते हैं जो यूवी रेज को जो है ब्लॉक करते हैं, इसकी जरूरत वहां पर होती है जहां पर यूवी रेडिएशन ज्यादा होता है, जैसे आप सी शोर में समुद्र के किनारे में जा रहे हो या फिर आप पहाड़ों में जा रहे हो जहां बर्फ पड़ता है, तो वहां पर यूवी रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है।

0: तो यूवीए ब्लॉकिंग जो है स्पेक्टिकल या गॉगल चाहिए होंगे। दूसरा होता है कॉमन जो है धूप से बचाव के लिए, तो उसमें शेडेड लेंस भी चल जाते हैं। नॉर्मली लोग जो है ऐसे कलर लगाते हैं जिससे आपको सूदिंग इफेक्ट आ जाए, तो आप चाहेंगे तो ग्रे कलर के या थोड़े से लाइट ब्लू टिंच वाले गॉगल्स ले लेंगे, तो इसमें पावर नहीं होता है और ये बड़े स्मूथ लेंसेज होते हैं, इसमें कोई पावर नहीं होना चाहिए। कभी कभी लेंसेज ऐसे बन जाते हैं जिसमें उसकी बनावट ऐसी होती है कि उससे लाइट के रेज जो है डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो आपको देखने में दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और साथ में फ्रेम ऐसा होना चाहिए कि जो हल्का हो, जिससे आपके चेहरे में उसका दबाव नहीं पड़े, कानों के ऊपर दबाव नहीं पड़े, बिकॉज गॉगल्स जो है थोड़े बड़े साइज के होने चाहिए, तो
1: जी।
0: फ्रेम हल्के रखेंगे तो आपको सुविधा रहेगी।
1: हम तो स्टाइल के लिए पहनते सर।
0: हाँ, स्टाइल के लिए भी जो है फ्रेम भी बन सकती है,
1: जी।
0: लेकिन हमेशा लाइट होनी चाहिए जिससे आपके चेहरे में दबाव नहीं पड़े, नहीं तो उसके कारण से भी आंखों में दर्द और सर में दर्द हो सकता है।
1: जी सर, तो स्टाइल से ज्यादा ये आंखों के प्रोटेक्शन के लिए।
0: सही कह रहे
1: हैं
0: आप।
1: सर हाँ, पानी की मैंने बात की। कई बार हम देखते हैं कि लोग जोर जोर से आंखों में जो है ठंडे पानी की छींटे मारते हैं, तो एक बार एक आंखों के डॉक्टर साहिबा ने मुझे बताया कि कभी भी आंखों में जोर से छींटे नहीं मारनी चाहिए सर।
0: नहीं, आंखों के जब छींटे हम कहते हैं तो वो जो है बंद आंखों में मारने चाहिए, आपके जो आंखों के पलके हैं बंद होने चाहिए, उसके ऊपर जो है पानी डालिए।
1: हाँ।
0: हम डायरेक्टली आंख में पानी के छींटे कभी नहीं कहते हैं डालो, क्योंकि उससे जो है आंखों में नुकसान हो सकता है। आंखों के जो जो पुतली है बहुत ही नाजुक होते हैं, कभी कभी उन छींटों से ही उसमें जो है जख्म हो सकता है। और पानी आप हमें पता है कभी जो है 100% प्योर और साफ नहीं होता है, तो डायरेक्टली कभी आंखों में छींटे नहीं मारना चाहिए। यदि आंखों के धोना भी है तो बंद आंखों से आप पानी डालेंगे तो धीरे धीरे पानी जो है अंदर चले जाएंगे, वो पानी फिर बाहर अपने आप निकल जाएंगे। तो आंखों में भगवान ने दो पलके बना रखी हैं जो अंदर से अपने आप सफाई कर देती है।
1: तो तरीका जो है सही होना
0: हाँ,
1: चाहिए।
0: सही कह रहे हैं।
1: एक व्हाट्सएप मैसेज है, ये 69 साल के हैं, आरपी शर्मा जी हैं, लिखते हैं कि आई गॉट माय आईज चेक्ड एट एम्स एंड देयर इज सूडो होल इन द राइट आई। तो दोनों आंखों में इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है सर। प्लीज टेल, इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर सूडो होल?
0: नहीं शर्मा जी, आपने तो काफ़ी ज्ञान वाली बातें बताई, इसका मतलब कि आपका जांच बहुत अच्छी तरह से हुआ है। सूडो होल में जो है नॉर्मली हम लोग कोई सर्जरी करते नहीं है, कि ऐसे मरीजों की जो नज़र होती है, जो विजन होती है, ठीक ठाक होती है। और जो होल की सर्जरी हम तब करते हैं जब ये होल पूरा कंप्लीट होल हो जाता है या ट्रू होल हो जाता है, या फिर नज़र कम हो रही हो, या पर्दे में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें ट्रैक्शन या खिंचाव हो रही हो, तब ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसा आपने बताया, आपने लिखा नहीं कि आपकी नज़र कितनी है, क्योंकि आजकल जो भी सर्जरी हम करते हैं नज़र को साफ करने के लिए करते हैं। यदि आपकी नज़र अच्छी है तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, यदि नज़र कम होती जा रही है तो ज़रूर एक चेक कराइए, जिससे कि पता चल जाए कि होल में कोई प्रोग्रेशन तो नहीं हो रहा है, तो उसका इलाज करना पड़ेगा, संभव है इसका इलाज।
1: जी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। मुनीश पाल उत्तराखंड से सर लिखते हैं कि मेरी आईज जो है मटमैली सी हैं, पीली सी लगती हैं, तो क्या करूं मैं?
0: तो इसका तो कोई खास इलाज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो जो सफ़ेद पार्ट होता है जिसे हम कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें पिगमेंटेशन आ जाती है। वो जो है बचपन में आपको एलर्जी रही हो उससे भी पिगमेंटेशन हो जाता है। कभी कभी आंखों की जो कलर होती है वो आपके हेरिडिटरी होती है, तो इसको जो है साफ नहीं कर सकते हैं, ये आपकी जो है एक पहचान हो जाती है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, इससे आपको देखने में या आंखों में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक चेकअप करा लीजिए पर्दे का। कभी कभी क्या होता है कि आपको विटामिन की डिफिशेंसी हो सकती है, जिससे कि आंखों में मटमैलापन आ सकता है, और साथ में पीछे पर्दा भी खराब हो रहा होता है विटामिन, स्पेशली विटामिन ए डिफिशेंसी की। तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई बीमारी है, ये डिसकलरेशन बहुत सारे लोगों को हो जाता है। एक ज़रूर अपने चश्मे का नंबर चेक कराइए और पुतली का चेकअप करा लीजिए, उसमें कोई बीमारी तो नहीं है।
1: जी, हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: हाँ बोलिए, नमस्कार, नाम बताइए।
2: मैं मोहम्मद रेहान, नमस्ते, बंगाल जिले उत्तर दिनाजपुर से बात कर रहा हूँ।
1: हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए डॉक्टर को धन्यवाद।
1: हाँ, शुक्रिया।
0: थैंक यू, थैंक यू। कुछ पूछना

0: तो मुझे जानकारी ये चाहिए कि जब मैं छोटा था 6-7 साल की उम्र में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो
1: हाँ
0: डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई की वजह से दवाई की रिएक्शन की वजह से मेरा आँख खराब हो गया था, दोनों आँख। तो अब मेरी उम्र लगभग 20 साल है, तो एक आंखों से मैं रोशनी पता करता हूँ, जैसे रात होती है रात पता चलता है, अभी रात है अंधेरा है, और जब दिन आ जाता है तो पता चलता है कि अभी दिन है, उजाला है, और लैब की रोशनी पता चल जाता है। इसमें कोई सोल्यूशन है क्या, कोई उपाय है क्या? मैं जिस तरह पहले देख रहा था उस तरह देख पाऊँ?
1: आपकी दूसरी आंख कैसी है?
0: जैसा दूसरी आंख जो होकर के बैठ गया उससे कुछ पता नहीं चलता, और एक आंख से रोशनी पता चलता है, सिर्फ उजाला लैब की रोशनी और दिन होता है तो उतना चलता है, दिन है भी।
1: अच्छा, ये तो बड़ी खेद की बात है कि आपको दवाई की जो है रिएक्शन हो गई है। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में जो है रिएक्शन हो जाता है, फफोले पड़ जाते हैं, आँखों के पर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ये हुआ है। तो नॉर्मली जो है इसका इलाज सही टाइम में हो जाए इमिडिएटली तो कभी कभी आँखों का बचाव कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको 14-15 साल हो गए इस अटैक को, तो मुझे लगता है जो आपकी एक आँख जो थोड़ी जिसमें रोशनी दिख रही है उसमें हो सकता है कि जो आगे की पुतली है पूरी खराब हो गई हो, जिसमें रोशनी अंदर नहीं जा रही हो। आजकल हम लोग जो है ऐसे मरीजों का या तो ऊपर की पुतली जो है साफ कर देते हैं, या कभी कभी जो है हम जो है इसमें आर्टिफिशियल आई या प्रोसेसेस डाल देते हैं जिसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो उसका एक चेकअप करना पड़ेगा हमें, पीछे आपका पर्दा और नस सही है तो आगे से हम जो है प्रोस्थेटिक आई लगा सकते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं।
0: और डॉक्टर साहब, मैं 2-3 मरतबा नेपाल भी गया था, डॉक्टर को दिखाए थे, तो
1: तो नहीं
0: डॉक्टर बोलने कि इससे ज्यादा रोशनी नहीं आएगी।
1: नहीं इसका इलाज जो है नेपाल वाले हॉस्पिटल में इसका संभव नहीं है। इंडिया में भी
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: चार हॉस्पिटल ही हैं जहाँ पर ये जो है आपको जो है
0: जी,
1: आई लग सकते हैं, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो
0: कौन कौन सा हॉस्पिटल सर, थोड़ा सा नाम बताइए।
1: दिल्ली में आ सकते हैं, दिल्ली में एम्स का जो आई हॉस्पिटल है, या फिर आपको चेन्नई में जाना पड़ेगा शंकर नेत्रालय में, वहाँ पर ये दो जगह अच्छे इलाज हो सकते हैं आपको। यदि पीछे पर नस में जान है तो ये ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं।
2: जी सर, एक और कॉलर है। हेलो,
3: हेलो,
2: हाँ जी पूछिए।
3: नमस्कार
2: नमस्कार नमस्कार
3: डॉक्टर साहब, नमस्ते।
1: नमस्ते भैया।
3: डॉक्टर साहब, मैं आरपी पेशेंट हूँ, हमारा भी है समस्या का समाधान कुछ। चौवन साल
1: आपको पता है कि
3: सर ये है कि 7-8% रोशनी बची है, बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे ले जाते हैं इधर उधर, बड़ी प्रॉब्लम में होंगे, कुछ है समाधान? जो मतलब जितना जितनी रोशनी है यही रुक जाए यहीं पर,
1: बट
3: जो जो दिखता वो क्लियर दिखने लगे, ऐसा कुछ है?
1: आपको बताइए कि इसका कोई खास इलाज अभी तक निजात इसका नहीं हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे जो है नस खराब हो जाती है और रोशनी खत्म होने लगती है। तो इतने सालों में आपको इतनी ये बीमारी चल रही है, तो कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम करना आपको चाहिए था या कर रखा होगा आपने, जिसके द्वारा आप जो है ना आगे की जो है लाइफ बिता सकते हैं। जहाँ तक मॉडर्न इलाज है वो इंडिया में संभव नहीं है, विदेशों में कुछ ट्रायल्स हो रहे हैं जिसमें हम रेटिना ट्रांसप्लांट कर देते हैं, वो इंडिया में अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
2: जी सर, एक व्हाट्सएप मैसेज है और लिखने वाले हैं धर्म भाटिया रोहतक से, मिसेस धर्म भाटिया फ्रॉम रोहतक। इन्होंने लिखा है सर कि इनकी दोनों आंखों में लेंस लगे हुए हैं, दूर और नज़दीक का चश्मा अलग अलग है दोनों का। पूछना चाहती है कि जब ये बाहर निकली धूप में तो अपने नज़र वाला चश्मा पहने या गॉगल्स पहन सकती हैं सर?
1: नहीं नहीं भाटिया मैडम, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब आप बाहर निकलते हैं तो दूर का चश्मा लगाइए कि उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और साथ में पास वाला चश्मा भी अपने पर्स में या जेब में रख लें, जिससे कि सपोज आपको कोई चीज़ पढ़ना या बिल देखना हो या मार्केटिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आराम से पास के चश्मे से पास का देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको दूर का चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़रूर साथ में लेके चलिए आप।
2: जी, तो जो बात सर मैं भी पूछना चाहूँगी यहाँ पर, जो लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी वही गाइडलाइंस हैं जो नॉर्मल आंखों वालों के लिए सर?
1: नहीं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा जो है प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लेंस जो कॉन्टैक्ट लेंस जो आँख में लगाते हैं, हम जानते हैं एक तरह से ये फॉरेन बॉडी है आँख के ऊपर, तो इसमें जो पुतली के जो जैसे मैंने बताया था एक थिन लेयर बनती है जिसे टीयर फिल्म कहते हैं, वो कॉन्टैक्ट लेंस के ऊपर भी बनती है, इसलिए जो है कॉन्टैक्ट लेंस ड्राइनेस ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो उन लोगों को एलर्जी भी ज़्यादा हो सकती है, ड्राइनेस ज़्यादा हो सकती है।

0: हैं, तो उन लोगों को और भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आंखें ड्राई ना हो जाए। और कॉन्टैक्ट लेंस जो है, जो प्रिस्क्राइब टाइम होता है उतना ही पहने, ज़्यादा टाइम नहीं पहने। डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस हो तो और भी ज़्यादा है। कॉन्टैक्ट लेंस के साथ में भी आप गॉगल्स लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सुविधा रहेगी।
1: जी सर। और अब यहाँ पर हम सर एक ब्रेक लेंगे संगीत का, और अब मैं आपके फेवरेट सिंगर जुबिन नौटियाल की आवाज़ में गाना प्ले करने जा रही हूँ सर।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजे healthairdelhi@gmail.com पर।
2: और विषय आज का है कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स, गर्मियों के मौसम में आंखों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए। तो एक बात जो हम सभी जानना चाहेंगे सर, कि गर्मियों के दिनों में अक्सर लोगों के पास बहुत समय होता है, छुट्टियां होती है बच्चों की भी और बड़े भी एक तरह से, अगर वो स्कूल कॉलेजेस में है तो टीचर्स की छुट्टी होती है, तो ऐसे समय में ज़्यादातर लोग अपने पेरेंट्स का इलाज करवाते हैं, उनकी आई सर्जरी करवाते हैं, या जो बच्चे होते हैं उनको भी लेकर वो अगर उनको भी आंखों की सुरक्षा के उपाय के बारे में बताते हैं। तो सर पेरेंट्स की बात करें तो क्या इस दौरान, इस सीजन में जो सर्जरी की बात आती है, तो सर आप क्या सलाह देंगे कि क्या ये सही सीजन है?
3: हाँ हाँ, जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, ज़्यादातर कैटरेट का ऑपरेशन होता है। हम जानते हैं कि ये जो है 60 साल के ऊपर वाले लोग नॉर्मली होते हैं, यदि उनको कोई और बीमारी नहीं हो, जैसे मैंने कहा था डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड, यदि बीमारी ये कंट्रोल में हो तो कैटरेक्ट सर्जरी आराम से संभव है। जैसे कि अब मैंने शुरू में कहा था कि ये मौसम ऐसा है कि अब यदि बाहर नहीं निकलेंगे तो सारे कंफर्ट में रहेंगे घर के अंदर जो है, और बूढ़े लोग जो हैं जिनको ऑपरेशन हो जाता है तो घर में ही रहते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बीमारियां इस सीजन में चलती रहती हैं। डिहाइड्रेशन, जैसे मैंने कहा था, ओल्ड एज

0: बहुत शीघ्र हो सकता है। तो जहाँ भी जाएँ ऐसे जगह पर जाएँ कि वहाँ भीड़ कम हो, और साथ में सारी सुविधाएं जो है आप साथ लेके चलें, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे जगह में आपको लंबा वेट करना पड़े, वहाँ पर पानी और खाने पीने की सुविधा कम हो। तो ये भी हमारे पेरेंट्स के लिए हमें सोच के चलना चाहिए कि ये सुविधा उनको हो। आजकल ऑपरेशन की पद्धतियाँ इतनी मॉडर्न हो गई हैं कि ज़्यादा दुविधा होती नहीं है, तो नॉर्मली यस ऑपरेशन करा लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है।
1: जी
0: दूसरा आपने कहा था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ इसमें हो
1: हाँ,
0: जाती
1: और
0: हैं।
1: वो घर में बैठे बैठे बहुत हुड़दंग
0: हाँ
1: मचाते हैं, बहुत सारे उठा पटक बैठक करते हैं, तो ऐसे में उनकी आंखों की चोट लग सकती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है
0: हाँ तो
1: सर।
0: इसमें जो है एक दो तरीके से है, एक तो समय का सदुपयोग करना। तो हम जानते हैं कि नॉर्मली पेरेंट्स जो है एनुअल चेकअप जो है समर वेकेशन में ही कराते हैं, तो ये अच्छा टाइम है। लेकिन जैसे आपने सही कहा कि कभी कभी घर में बच्चे बैठे रहते हैं तो आपस में खेलते हैं तो चोट लग सकती है, क्योंकि बाहर गर्मी होती तो बाहर जा नहीं सकते। तो उसकी उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को जो है और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से या खेलने की चीज़ से चोट लग सकती है। दूसरा, बच्चे जो है इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सपोज रहते हैं, या फिर आप टैबलेट्स में रहेंगे या लैपटॉप में या कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में इनकी क्लासेस टीचिंग ये रहती है। तो उसके लिए भी समर वेकेशन में वो ब्रेक में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लोग जो है उनकी आँखें जो है ठीक हो जाएँ। कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को आंखों में दर्द होना, उनके चश्मे का नंबर चेंज हो जाना, सर में दर्द रहना, ये बड़ा कॉमन सिम्टम इस बीच में हो गया था। तो मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स जो ये सुरक्षित अपनाएं कि उनके बच्चे
1: जी
0: कंप्यूटर और लैपटॉप से दूर हो जाएं इस टाइम में और पूरा वेकेशन इंजॉय करें।
1: जी सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आया है व्हाट्सएप मैसेज का। राकेश कुमार सोनी उत्तर प्रदेश से हैं, बस्ती डिस्ट्रिक्ट से लिखा है इन्होंने सर, कि लिखते हैं, मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और पेरिस से एक समाचार मुझे सुनने को मिला है कि ब्लाइंड्स को कोई आर्टिफिशियल माध्यम से दिखाया जा रहा है, तो क्या ये बात सच है सर?
0: नहीं, ये बात सच है, क्योंकि ऐसे रिसर्च पिछले कई सालों से हो रहे हैं कि कैसे हम ब्लाइंड लोगों को जो है कुछ ऐसे देखने की सुविधा प्रदान कर सकें। इसमें जो है एक कैमरा सिस्टम चिप जो है लग जाता है आंखों में, जिसके द्वारा इमेज जो है ब्रेन में चला जाता है। तो बिल्कुल साफ अभी तक दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके सराउंडिंग 1 या 2 मीटर के डिस्टेंस में आपको जो है इमेजेस पता चल जाते हैं। तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपके सामने है, और आने वाले 10-15 सालों में ये सिस्टम और ही इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे नया ये सिस्टम बनेगा, उसमें इतने सारे रिसर्च हुए हैं, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बड़े सारे लोगों को इसकी सुविधा मिलनी जो है इंडिया में तो एटलीस्ट दिक्कत आएगी इसके लिए।
1: लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कॉस्ट कम होता
0: डेफिनेटली
1: जाएगा सर।
0: आप बहुत से ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो आपको जो है एक तरह से होलोग्राफिक इमेज
1: जी
0: दिखा सकते हैं,
1: जी
0: आपके ब्रेन में इमेज बन सकती है डायरेक्टली, क्योंकि ऐसे ऐसे सिस्टम जो है पिकअप करके आपके ब्रेन में ऐसे सिस्टम बन जाती है जिससे कि आपको दिखाई देना संभव
1: जी
0: है फ्यूचर में।
1: हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: सर एक कॉलर हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी बोलिए।
1: हाँ जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते बोलिए।
1: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ सुभाष नगर से।
0: रघुविंदर जी
1: डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: मेरा सवाल ये है कि 2020 में मेरी दोनों आईज का कैटरेक्ट का सर्जरी हुआ था। बाकी सब तो ठीक है, मेरा चश्मा भी बन गया नजदीक का, लेकिन जब भी मोबाइल यूज करता हूँ या टीवी देखता हूँ तो आंखों से पानी आने शुरू हो जाता है, तो सर कुछ बताएं क्या करूँ?
2: हाँ, ये जो है बहुत ही कॉमन समस्या है सभी लोगों को, आपको ही नहीं, जिन्होंने ऑपरेशन करा रखा उनको ही नहीं, और लोगों को भी जो है पानी आना जो काफ़ी कॉमन है, स्पेशली जो है दिल्ली के आसपास में जो पोल्यूशन है और जो हीट है उसके कारण से। लेकिन दो तीन चीज़ें हो सकती है, एक तो जो है आपकी जो पलकें हैं उसमें सूजन हो, जिसे हम बीमारी जिसे कहते हैं MGD हो, या फिर थोड़ी सी ड्राइनेस हो, क्योंकि जब भी आप जो है मोबाइल में काम करेंगे तो आपके पलकें जो है झपकती नहीं है जितनी हम चाहते हैं, तो उससे भी ड्राइनेस बढ़ सकती है, तो वाटरिंग रिफ्लेक्स टीयरिंग हो जाती है। तो मैं चाहूँगा जब भी आप मोबाइल में काम कर रहे हो तो हर 15-20 सेकेंड में जान बूझ करके पलकें झपकिए, जिससे कि टीयर फिल्म स्प्रेड हो जाएगी और आपको जो है पानी आना कम हो जाएगा। यदि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो कभी कभी हम पानी का रास्ता चेक करते हैं कहीं ब्लॉक तो नहीं है कहीं पर, तो उसकी भी जो है इलाज हम लोग कर सकते हैं
0: जी।
1: थैंक यू,
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर नागपुर से SNL दास जी का व्हाट्सएप मैसेज है, इन्होंने लिखा है कि आई गॉट माई कैट

0: cataracts operated on both the eyes with imported lens 8 years back. I did not have any problem till now. Should I need periodical checkup?
1: देखो, जहाँ तक कैटरेक्ट ऑपरेशन जो लेंस लगता है वो तो लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। कभी कभी जो है लेंस के पीछे जिसके ऊपर हम लेंस रखते हैं वो झिल्ली जो है थोड़ी सी हेजी हो सकती है, जो आपके केस में नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जानते हैं ये ऐसा एज ग्रुप है जिसमें कुछ ना कुछ बीमारियाँ हो सकती है। जैसे शुरू में हमने कहा था डायबिटीज़ हो सकता है, उससे पर्दे में खराबी आ सकती है, काला मोतिया डेवलप हो सकता है, या फिर एक कॉलर ने हमें पूछा था मैकुलर डीजनरेशन, ये सब हो सकता है। तो फिर भी साल में एक बार अपने डॉक्टर से आंखों का चेकअप जरूर कराना चाहिए हर आदमी को।
0: जी सर, एक बहुत कम समय रह गया सर. हेलो,
2: डॉक्टर नमस्कार,
1: नमस्कार भैया,
2: राजेश खन्ना, हैप्पी ईश्वर कॉलोनी जालंधर पंजाब से.
1: क्या
0: हाय
1: बात है।
0: हैप्पी जी, कम शब्दों में बताइए क्योंकि समय बहुत कम है.
2: कम शब्दों में यही है कि मैं अपने स्पेक्स हटाना चाहता हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में प्रॉब्लम आती थी. मैंने स्पेक्स लगा ली है,
1: हाँ
2: बाकी सब परेशानी ठीक है. डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ, स्पेक्स मुझे अजीब सी लगती है. इसके जो मुझे बर्ड बोलने जो लेंसेज होते हैं जो अंदर से स्पेक्स हट जाए, अंदर जो लगते हैं जो वो कामयाब है या नहीं है. मेरी बात समझ गए होंगे आप.
1: मैं
2: जी
1: समझ गया हैप्पी जी। पहले तो मेरा नमस्कार लीजिए आप, आपसे
2: नमस्कार,
1: दोबारा
2: आपको
1: मुलाकात हो
2: नमस्कार.
1: रही है मेरी।
2: थैंक यू सर, डॉक्टर. जी.
1: जहाँ तक जो है आजकल जो पास के नंबर की सबको दुविधा रहती है, फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे साधन है जिससे कि जो है इसको भी इस दुविधा को ठीक कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत आंखों का जो लेंस होता है नेचुरल लेंस, उसमें कुछ खराबी आ रही है या उसमें हेजीनेस आ रहा हो तो पूरा लेंस निकाल के आर्टिफिशियल लेंस लगा सकते हैं। या फिर हम जो है लेंस के बीच में एक स्पेस भी होता है पुतली के पीछे जहाँ पर लेंस फिट कर सकते हैं। तो ये सर्जरी उन्हीं लोगों को हम कहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही हो चश्मे के साथ,
2: नहीं,
1: जिनको
2: दिक्कत तो नहीं आ रही. मैं थोड़ी अपनी कहते हैं कि भाई अजीब सा लगता है, मैं उम्र ज्यादा लगती है
1: नहीं,
2: लगाने
1: देखो ऐसा हैप्पी जी जो है भगवान ने जो चीज़ दी है उसे हैप्पी रहना चाहिए, और कुछ छेड़खानी करेंगे तो ज्यादा नुकसान भी हो सकता
0: हाँ चलिए सर, इसी इसी इसी बात के साथ वाइंड अप करते हैं और हैप्पी
2: थैंक यू।
0: जी को आंसर उनका मिल गया होगा. सर, तो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स.
1: मैं ये चाहूंगा कि गर्मी जो है हमारे देश में आती है और उसके साथ में जो है प्रिकॉशन तो लेना जरूरी है, लेकिन साथ में गर्मी में जो चीज़ फ़ायदा करती है उसको भी लेना ज़रूरी है। जैसे हमारे पता है कि बड़े सारे पिगमेंटेड फ्रूट्स मैंगोज आ जाते हैं मार्केट में, उसको लेंगे तो उससे जो है आपको शरीर में फ़ायदा होगा। धूप में जाएंगे तो ज़रूर जो है चश्मा या गॉगल्स लगा लीजिए, हैट है तो हैट या कैप पहन लीजिए। और जहाँ तक हमने देखा है जो लोग ओपन गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं, उनको अपने सरों को ढकना चाहिए, गॉगल्स लगाना चाहिए, हेलमेट हो तो और भी अच्छी बात है। और साथ में हमेशा एक पानी का पीने का बॉटल साथ में रखें जिससे कि आपकी प्यास तो बुझ ही सकती है लेकिन आंखों की सफाई भी हो सकती है। और कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, ज़रूर चेकअप कराइए जिससे कि बीमारी ख़राब ना हो जाए।
0: तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल जी. और अब सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. डॉक्टर जीवन सिंह तित्याल हमारे गेस्ट थे. टॉपिक था हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईज इन समर्स. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

0: हेलो हेलो
1: हेलो विपिन सुमन
0: हेलो दो
1: जी।
0: हेलो दोस्तों, मैं आ गया तुहाडा प्रोग्राम लैके। हेलो जलंधर, तो मैं तुहाडा दोस्त विपिन सुमन, तो तुसी भी आ के प्रोग्राम अपने च हाजिरी लवाओ ते नंबर डायल करो 01 81 23 41 174। तो देखते हैं अगले कॉलर केड़े आए जी। हेलो,
1: हेलो प्यार परी सत श्री अकाल विपिन सुमन जी।
0: हाँ जी।

0: काव्या, मेरा ना आज आइसक्रीम खाने का बड़ा मन कर रहा है।
1: बिल्कुल होगा ही, इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी है, साडे श्रोतियों नु भी लग रही होगी। ते जून का महीना चढ़ चुका है, ते अद्धा साल भी बीत चुका है, ते इतनी गर्मी दे विच गर्मी आइसक्रीम वर्गी चीज ठंडक पहुंचाने नु बहुत ज्यादा मदद करती है, ते जीभ ते स्वाद ते मुंह च पानी भी लेके आंदी है।
0: ते मैनू लगदा है चॉकलेट फ्लेवर सारियां दा फेवरेट है। तुहाडा केड़ा फेवरेट फ्लेवर है?
1: मेरे कई मतलब ना वक्त वक्त टाइम ते वक्त वक्त मूड ते है। कई बारी मेरा गर्मियां च सब तो ज़्यादा फेवरेट रहिंदा है बर्फ वाला गोला खाना या काला खट्टा खाना, वह मैनू वधिया लगता है। या जो मेरा मूड होगा जे आइसक्रीम ही खानी है या मेरे कोल गोले दी अवेलेबिलिटी नहीं हैगी, ते ऑरेंज फ्लेवर मैनू कई बारी खट्टे खट्टे मैनू ना फ्लेवर बड़े वधिया लगते हैं खाने।
0: क्या बात है, पर तुहानू पता एक ब्लेंड आंदा है चॉकलेट ते मार्शमैलो दा, उहनू असीं कहिंदे आ रॉकी रोड, मतलब वह पथरीला रस्ता नहीं, मतलब वह ना सोचियो कि असीं पत्थर खाने हुण, नहीं मतलब रॉकी रोड उसनों कहंदे है, ते वो एक

0: संभाल के इनिंग्स बनाई, आरसीबी ने 5 विकटां नाल जीत दर्ज की,
1: बिल्कुल
0: लगातार दूजा आईपीएल का खिताब जितया। ए फ्रेंचाइज दे इतिहास का सब तो सफल दौर मनिया जा रहा है। ते स्पेशली इस बारी असीं अपने श्रोतां नूं सुना रहे हाँ कि तुसीं जानदे हो फाइनल मैच विच मिलदियां ने कैप्स, ते इस बारी इनाम कहड़े कहड़े मिले ने। सो ओरेंज कैप, जिवें कि असीं सारे जानदे
1: बिल्कुल
0: हाँ, स्टार ऑफ द आईपीएल, 15 साल दे वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान
1: क्या बात
0: रॉयल्स
1: है।
0: दे, उन्हां ने 776 दौड़ां, स्ट्राइक रेट उन्हां दा सी 237.31, ते पर्पल कैप मिली है कागिसो रबाडा जीटी दे, उन्होंने 29 विकटां लईयां ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एक बारी फिर तो वैभव सूर्यवंशी नूं इमर्जिंग प्लेयर दा मिलिया है, ते सब तो ज़्यादा सिक्सेस हिट करन दा, 71 छक्के मारे ने इस बारी आईपीएल च प्रिया उन्होंने।
1: मतलब कि कल कही उन्होंने बारे कि मतलब उन्होंने सानू सारे ने एक कॉम्प्लेक्स दे दिता है कि भाई मैं इन्ना छोटा जे हाँ तो मैं इन्ना कुछ कर सकता, तो
0: ते
1: तुसी भी थोड़ा हड पैर मारो, थोड़ा अगे वधो, कुछ करो, है ना।
0: पंजाब दी एक न्यूज़ लेके आए हैं, पंजाब किंग्स दी टीम ने फेयर प्ले दा अवार्ड जीत्या
1: क्या
0: है, ते
1: बात
0: असी
1: है,
0: अपनी
1: मतलब
0: पंजाब नू सलाम कर दे कि फाइनली बहुत ही वधिया प्रदर्शन सी आईपीएल विच पंजाब दा।
1: बिल्कुल
0: ते इवें ही पंजाब दी गल्ला करदे हां, ते तुहाडे लई होर खबरां लेके आने हां इस गाने तों बाद।
1: ते एक्साइटेड रहो क्योंकि न्यूज़ जेड़ी है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है।

गांव वालों, बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

0: जिस दुनिया में आप रहती हैं वहां इंसान के दिल और दिमाग की नहीं, उसके कपड़ों की इज्जत होती है। शार्क स्किन के सूट, सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत होती
1: है। ये बात नहीं, हम लोग खुद कोई अमीर नहीं। तुम देख सकते हो सारी बस्ती है गरीबों की।
0: यही तो दुख है, आज गरीब भी गरीब को नहीं पहचानता। मेरी जापानी हालत देखकर आपको मेरे पढ़े लिखे होने का भी यकीन नहीं, इसलिए तो अपनी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूं। ये देखिए, मैं वाकई बीए पास हूं, ग्रेजुएट हूं। ये देखिए मेरी डिग्री, देखिए।
1: माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है। ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो?
0: इसलिए देवी जी कि इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता है। या ये समझ लीजिए कि दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा है। और सच पूछिए तो दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए ये बेवकूफ मस्करे का फेस बड़े काम की चीज है।

0: ना सा बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया पलां च तेरे वीरां तो कोहा दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरो ही नहीं निकले, उते घर बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने ते सुनदे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ भुला देवे।
3: FM Rainbow enjoy कर रहे हो तुसी आज राजवीर दे नाल। ते सब तो पहली गल करदे आ कि अज दुनिया दे विच इदां दीआं किहड़ीआं गल्लां हो रहीआं ने जिहदे करके लोक अजे वी पिछलीआं चीज़ां याद कर

ही है जाना। फिर इन्हां ने क्या है कि फिल्म जिस देश में गंगा बहती है उसका गीत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, या फिर कोई भी सदाबहार नगमा सुनवा दीजिए। आप पता नहीं ही गीत सुनवावांगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। फिर उस तो बाद साढ़े कोल अगे एक नाम आया है जिन्होंने सानू क्या है कि तमक जलंधर पेंदी क्या है कि अमरगढ़ जिला श्री गंगानगर तो कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर मान, हरविंदर मान, कहिंदे कि कोई भी गीत सुनवा दिओ। फिर उस तो बाद साढ़े कोल पिंड हीरा वाली जिला फाजिलका दे एक स्रोता ने इन्होंने सानू लिखा है कि सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदू पार्वती, हिमांशु गोदारा, कहिंदे कि तुसी सानू कोई भी गीत सुनवा दिओ। जी हाँ, तुहानू गीत जरूर सुनवाया जाएगा। फिलहाल इन्हां ने एक फरमाइश की है जिन्होंने पहला मैसेज भेजा है कि जिस देश में गंगा बहती है उसका गीत है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।